सकल प्रजा जिन आप सवारी, सिवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मोह बद कियो।

पण जे को कथाय त्यंत नंद तथा लो लो आकार जिव जे हुकम तिवै तिव कार विखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पाव हरा धीरज सुनियार वैरण मत वीद हथियार पौ खलावन तपताव भांडा पाव अमृत तित ढाल घड़िया शब्द सची टकसाल जिनको नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निहार। सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियां आईयां बुरियां आईयां वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जनी नाम ते आया गए मसकत कहा।

गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोख नमो सोख सोख नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परमतान नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्णं नमो सर्व रंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीन बीजे अखेजे अभेजे समस्तं प्रसिद्धे कृपानु स्वरूपे कुकर्म प्रणाशी सिद्धं निवासी चर्पण त्वय प्रसाद अमृत कर्म्य अमृत धर्म्य खल जोगे चल भोगे चल राज्य अटल साजय खल धर्म लख कर्म सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग भाने सर्वंग माने सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वं प्राणं सर्वं भुक्त सर्वं भुक्ता सर्वं योक्ता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले

के ब्रह्मं स्वरूपे के अनुपा अनुपे के आदा देव है कि आप अपे है कि चित्रम ही ने के अधि ने के रोजी रे जा कर ही मेरे हक के पाक भी ऐब है गैब लु गैब है कि गा अफूल गुनाह है कि शाह अनशाह है कि कारण को निंद है करो जी देहा है कि राज करीम है कि कर्मं करीम है कि सर्वं कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मानी है सर्वत्र दानी है सर्वत्र गौण है सर्वत्र पौन है सर्वत्र देसा है सर्वत्र भेसा है सर्वत्र राजा है सर्वत्र साजा है सर्वत्र दीन है सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देसा है सर्वत्र भेसा है सर्वत्र काल है सर्वत्र पाल है सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र काज है सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भुख है सर्वत्र त्राण है सर्वत्र प्राण है सर्वत्र देश है सर्वत्र भेसा है के सर्वत्र मन है सदैव प्रधान है सर्वत्र जाप है सर्वत्र थाप है सर्वत्र पान है सर्वत्र मान है सर्वत्र इंद्र है सर्वत्र चंद्र है सर्वं कली में के परम बहिम में के आकल अलम में के साहिब कलाम में के हुस्नुल वजू है तमामुल रुजू है हमें सुल सलाम में सलीखत मोदा में गनी मुलशिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तुम्मा मैं रजूल निदान हरी फुल अजी मेरे जायक यकीन है अनेक उलतरंग है अभेद है अभंग है आजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभोगता प्रवाह है सुजोगता सुधा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो प्राज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैव काम है निर्बाध स्वरूप है आगाध है अनूप है उंगाद रूपे अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिका मित्र वर्गं त्रिबाध्य गंजे अगाध्य सुपंग सर्व भाग्य सुसर्वा अनुरागे सुसर्वा अनुराग त्रिभुक्त स्वरूप है अशज है अशुत है किन्नरकम प्रणास है पृथ्वी प्रवास है निरुक्त प्रवाह है सदा सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयोगता अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रयोगता अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अभेख है अलेख है अपरम है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंध है अबंध है अभक्त है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलिख है अलेख है अलेख है अपेख है अटह है अगह है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चर प्रशंत है प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ज्ञाता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राण सर्वं त्राण सर्वं कर्म सर्वं धर्म सर्वं योगता सर्वं मुक्ता रसावल शांत है प्रसाद नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तत् न मत न जात न पत नृशाकं शरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रवाह है अजय है अजा है भगवती शंत प्रसाद के जा हरजूर है के हाजर हजूर है हमें सुलो सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है के गाम करीम है के राज करीम है के रोजी देहान है के राज करें है करीम मुल्क माल है के हुसनल जमाल है गनी मुल्क हिराज है गरीबुल निवाज है हिरासुल फिकन है हिरासुल फिक हरीफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकं प्रणास है समस्तुल निवास है गंजुल गनीम है रजाय करीम है समस्तुल जुबा है के साहिब की राह है के साहिब की राह है के नरकम प्रणास है बहिस्तुल निवास है के सर्पुल गुवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीस है समस्तुल अदीस है आदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल माँ है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के अचन प्रकाश है के मितो सुबास है के अजब स्वरूप है
कि अमितो में भूत है, कि अमितो पसा है, कि आत्म प्रवाह है, कि अचल अनंग है, कि अमितो अपंग है, मद भार संतु प्रसाद। मुन मन प्रणाम, गुण गण मुदाम, मर बरया गन, हर नर पर पान्यन गन प्रणाम, मुन मन सलाम, हर नर अखंड बर नर मंडन भवन आस, मुन मन प्रकाश, गुण गण प्रणाम, जल थल मुदाम, मन छे जियांगा सुनिय अपंग उपमा पार, गात मित उदार, जल थल मन दिसवस अपन, जल थल महंत दिसवस बियन, तन भवन आस त्रितर तुरा सजान, बाहु एक सदा हु अंकार, आद कथनी अनाद खल खंड ख्याल, गुर बरिया काल कर कर प्रणाम, चितर नाम छिज गात, अजना बात आजिजना बातन, चंद गातन, रंज बातन, टुट भंडारन, ठट अपार, अडीठ धर्मत, ढीठ कर्म, अणब्रण।

करुणालय है, अर्कालय है, खलखंडन है, महमंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व उबारण है, तृत के तन है, जाके कर्ण है, मनमानी है, जगजानी है, सर्वंपर है, सर्वंकर है, सर्वपाशी है, सर्वनाशी है, करुणा कर है, विश्वंपर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खलखंडस है, परते पर है।

अकृत है, तरणी तृत है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता अकृत है, अमृता अमृत है, अजवाकृत है, अमृता अमृत है, नरनायक है, कलकायक है, विश्वम प्रेम करुणालय है, नृप नायक है, सर्व पायक है, भव भंजन है, अर्गंजन है, रिप तापन है, जप जापन है, अकलंकृत है,

तीर्थ नाम दया दम दान सो संजम नेम अनेक बसेखै भेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान समान के पेखै पौन आहार जति जत धार सब सो विचार हजार को देखा है।

काले नहलेंगे। तोर अरीर मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे। श्री पद श्री भगवान।

गाड़े गड़ान के तोरण हार सुबत नहीं चकचार लवैया साहिब श्री सबको सिरना एक जाच का अनेक सो एक देवैया दान उदेफ निन्न साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बोपन खपेंगे सास मुह प्रसन्न फिर जगत

तू अंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सच्ची पात अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस है पग ते नर फेर न दे तरेंगे

ऐसे ही ऐसे सुबैस बितायो, बैस बितायो, साच कहूं सुन ले हो सब। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो, काहू ले पाहन पूज धरियो सिर, काहू ले लिंग गरे लटकायो, काहू लख्यो हर

नमस्कार तस्वीही को हमारी सकल प्रजाजनी आप सवारी सेवकन को सावकन सुख दियो सत्रन को पलमो बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पिशानत चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पिशाने कट कट के पट पट की जाने जब युद्ध करख करा करता रा प्रजा तर तब दे अपारा जब या करख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते बदन सृष सब तहरा आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही तेरह निरालम जानत भेद भेद हर आलम।

इकै रूप अनूप स्वरूप पारंग भयो राव कहीं भूपा अंडर जेर जसे तिजकिनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट भयो शंकर अकैठा सिगरी सृष्ट दिखाए चंपा हुआ जुगा स्वरूप सुयंप अव रक्षा मेरी तुम करो सिखे उबार असिख्य संगर हो दोष्ट जिते उठपत उत्पाता सकल मलेश करूरन कहता। जियस तो तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख्त हुए मरे पुरख जवन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्या है ताकि काल निक नहीं है रक्षा हुई ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहरि हो ताकि ताप तन कमय हरि हो रित सिद्ध कर्म सब होई दुष्छा श्व सकै न कोई।

करी। हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता, कल्पिक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता।

माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारिये, मनो क्यों विसारिये, एवड दाता जे अगर मैं आहार पहुंचावे उसनु क्यों पोए न सकी जिसनु वो अपनी लो लावे। अपनी ले व्यापे लाए गुरमुख सदा संभालिए, कह नान केवड़ दाता सो क्यों मनो विसारिये। जैसी अगन उधर में तैसी बाहर माया, माया अगन सब इको जे ही करते खेल रचाया जात स्पाणा ता जम्मिया। परवार भला पाया लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। ए माया जित हर विसरै मोहि उपजै पाहु।

चलत नदरी आया। कहे नानक श्रेष्ठ का मूल रचिया जोत राखी, तातु जग महे आया। मन चाउ भया प्रव आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया। हर गाओ मंगल ने सखिए सोग दुख ना व्या पै, गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना प्रजा पै। अनहत बाणी गुर सब जानी हर नाम हर सुभोगो। कहे नानक प्रभु आप मिलिया करण कारण जोगो, ये शरीरा मेरिया इस जग महे आए, कह क्या तुद कर्म कमाया। के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग महे आया, जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना बसाया।

होरी साहिब हो दयाल के पकड़ता सहाय कर कराए से सो सेवक सेवा करे जिसन हुक्म आए से हुक्म न होवे परवान ता कसमें

गुण निदान गुण तिन ही गाई, जाकौ कृपा धारी सो सुखिया धन उस जन्मा, नानक तिस बलिहारी। गुण निदान गुण तिन ही गाई,

गौरे नमः श्री गरुदेवे नमः अष्टपदी कल कलेश तन माहे मटावो नाम जपत गणत अनेक किन्ने राम नामे की आखर ताकि महिमा गनी ना आवे नान कौन संग मोहे दारो भगत जना के मन बस राम रहाओ प्रभु कै सिमरन दुख जम नस प्रभु कै सिमरन दुश्मन डरे प्रभु कै सिमरन आनंदन जागे प्रभु कै सिमरन दुख ना संतापे सरवन दान नानक हर रंग प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभु कै सिमरन विनसे दूजा प्रभु कै सिमरन दहगै मानी प्रभु कै सिमरन सफल फला नानक ताके लागू पाए प्रभु कै सिमरन उदरे मुचा प्रभु कै सिमरन सब को सुजै प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा अमृत नावरद माहे समाए नानक जन का दासन दस

0: पिंगल पार्वत पार पवन
1: करतार
0: करना मैं दीन बेनती करे संग सहाय सो आवे ना चीत बलुआ के ग्रह पीतर बसै दृढ़ कर माने मन है प्रतीत बैर विरोध काम क्रोध मोह
1: महा
0: यहाँ जुगत बिहाने के।

0: यह प्रसाद सत्य ही अमृत खाए,
1: तिसा कर को रख मन माए,
0: यह प्रसाद सगंधन तिन लावे,
1: तिसको सिमरत परम गत पावे,
0: यह प्रसाद बसे सुख मंदर,
1: तिसे त्याए सदा मन अंदर,
0: यह प्रसाद गृह संग सुख बसना,
1: आठ पैर सिमरो तिस रसना,
0: यह प्रसाद रंग रस भोग,
1: नानक सदा त्याए त्यावन जोग,
0: यह प्रसाद पाठ पटंबर हडावे,
1: तिसे त्याग कर तवर लगावे,
0: जह प्रसाद सुख से

0: सनेह कर नाथ।
1: जय प्रसाद पेटे विस्माद,
0: जय प्रसाद बोले अमृत रसना।
1: जय प्रसाद सुख सहजे वसना,
0: जय प्रसाद हस्त कर चले।
1: जय प्रसाद संपूर्ण बल है,
0: जय प्रसाद परम गत पावे।
1: जय प्रसाद सुख सहज समावे,
0: ऐसा प्रभ त्याग अबरकत लागो।
1: गुर प्रसाद नानक मन जागो,
0: जय प्रसाद तू प्रगट संसार।
1: इस प्रभ को मूल न मनो विसार,
0: जय प्रसाद तेरा प्रताप।
1: मन मूर्त ताको जाप,
0: जय प्रसाद तेरे कारज

0: साध के संग मुख उज्जवल होत,
1: साध
0: के संग मिटे अभिमान,
1: साध
0: के संग बूझे प्रभ नेरा,
1: साध
0: के संग पाए नाम रतन,
1: साध
0: की महिमा वर्णे कौन पराने, साध के संग अगोचर मिले, साध के संग आ वह पस पंचा, साध संग वे सब की रेन, साध के संग न कत होता वै, साध के संग माया ते पिन, साध संग दुश्मन सब मीत, साध संग किस्यो नहीं बैर, साध के संग ना ही को मंदा, साध के संग ना ही हो ताप, आपे जाने साध बढ़ाए, साध के संग ना कब होता वै, साध संग बस्त अगोचर लह, साध के संग बसे थान ऊचे, साध के संग दृढ़े सब धर्म, साध के संग पाए नाम निदान, साध के संग सब कुल उधारे, साधु के संग सुतन पावे, साध संग धर्म राय कर सेवा, साधु के संग पाप पलायन, साध के संग सर्व थान गम, साध के संग ना ही कुछ काल, साध के संग कुलूखत हरे, साध के संग इहा उहा सुहेला, जो इच्छा सो ई फल पावे, पार ब्रह्म साध रिद बसे, साध के संग सुनो हर नाओ, साध के संग न मनते बिसरे, साध के संग लगे प्रभ मीठा, साध संग पे आज्ञाकारे, साध के संग मिटे सब रोग, साध की महिमा वेद न जान है, साध की उपमा तह गुनते दूर, साध की शोभा का ना ही अंत,
1: साध
0: की शोभा ऊंचते ऊंची,
1: साध की शोभा

0: तीर से एक
1: ब्रह्म ज्ञानी का यह
0: गुनाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
1: जैसे महल न लागे जला
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए परगास।

ब्रह्म ज्ञानी की सब पर मया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस।

0: ब्रह्म ज्ञानी को जाने भेद,
1: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश,
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथ्या ना जाय अदाखर,
1: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर,
0: ब्रह्म ज्ञानी की मित कहुन बिखाने,
1: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने,
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार,
1: ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार,
0: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता,
1: ब्रह्म ज्ञानी सब जीवे नहीं मरता,
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता,
1: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण मुक्त दाता,
0: ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ।

पदे मिथ्या नाही रसना पारस पात्र रूप न पेखै नेत्र करना सुने काहू की निंदा गर प्रसाद बिख्या पर हरे इंद्री जित पंच दोख ते रहत वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न कर्म करत हो वह नह कर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाछै मन तन अंतर सिमरन गोपाल आप दृढ़ अबरह नाम जपावै भगौती भगवंत भगत का रंग मन ते विंसै सगला भरम सा संग पापा मल खोवै भगवंत की टहल करै नित नीत हर के चरण हृदय बसावै सो पंडित जो मन पर बोधै राम नाम सार रस पीवै हर की कथा हृदय बसावै वेद पुराण सिमरत बूझै मूल चौहबर ना को दे उपदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान जो जो जपै तिसकी गत होए कर कृपा अंतरूर धारै सर्व रोग का औखद नाम काहू जुगत कितै ना पाइए धर्म जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास आत्म राम तिस नदरी आया सदा निकट निकट हर जान अपने दास को आप कृपा करै सगल संग आत्म उदास प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै तैसा हरख तैसा उस सोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा मान तैसा अभिमान जो बरताए साई जुगत पार ब्रह्म के सगले ठाओ आपे कर्ण करावन जोग पसर्यो आप हुए अंत तरंग जैसी मत दे तैसा प्रगास।

मानुख की टेक वृथि सब जान, जिसके दिए रहे अकाए, मारे राखे को आप, तिसका हुक्म बूझ सुख होए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, उस्तत मन में कर निरंकार, निर्मल रसना अमृत पियो, नैनो पेख ठाकुर का रंग, चरण चलो मार्ग गोविंद, कर हर कर्म सर्वन हर कथा, बड़ पागी ते जन जग माहे, राम नाम जो करे विचार, मन तन मुख बोले हर मुखी, एको एक एक पछाने, नाम संग जिसका मन मानिया, गुर प्रसाद अपने आप सूजे, साध संग हर हर जस कहत, आंदन कीर्तन केवल बखियान, एक ऊपर जिस जन की आसा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, जिसको हर ब्रह्मन चित आवे, जिस प्रभ अपना कृपा करे, जैसा सा तैसा दृष्टाया, सोधत सोधत सोधत सीजिया, जब देखो तब सब किश मूल, न किश जन्मे न किश मरे, आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट, आपे आप सगल में आप, अविनाशी नाही किश खंड, अलख अपे पुरख प्रताप, जैन प्रभ जाता सो सोभा बंत, प्रभ के सेवक सगल उदारन, आपे मेल लय कृपाल, उनकी सेवा सोई लागे, नाम जपत पावे विश्राम। सदा सदा बस जो किश करे सु प्रभ के रंग, सह सभाए हो वैसो होए, प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जिस ते उपजे तिस माहे समाए,

बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।